0: सच कह रहे होंगे।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी पानी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे होंगे ने।

0: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
1: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

सो गाइस खूबसूरत सवेर का खूबसूरत लोग खूबसूरत गल्लां बातां शामिल होने जा रहे हैं और खूबसूरत जतन दे विच अमेरिका और कैनेडा दे विच CHLO डिजिटल AM फ्रीक्वेंसी राही अमदीप सिंह बेनीपाल मुखातिब है तुहाडा ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर दे विच आकाशवाणी दे विच तकरीबन 1 decade प्लस एक दहाके तो वध दा समा हो चुका है और इस समय शो नूं प्रेजेंट कर रहा है पीयरसन एयरपोर्ट दे ट्रैक 6 जिथे वेस्ट जेट लैंड कर चुके है यानी कि वेस्ट तो लोग आ चुके ने ते अज दे शो दे विच तुसीं साडे नाल हो 401 मूविंग वेल मैजिक देख रहे हो सामने हो सामने ही डेयरी रोड बिजी नज़र आ रहा है मैनू ते नाल दी नाल ट्रैफिक दे विच तुसीं अगर हो किते स्टक तां तुसीं कोई गल नहीं साडी गलबात नूं सुणदे सुणदे पता ही नहीं लगना कित्थों कित्थे पहुँच गए और ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते अराउंड क्लोज टू 15 years इन ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारे लोग इन्हें ही सालों तो जुड़े ने 9-13 स्टूडीज जे घड़ियां दे उत्ते कि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतजार है भूखे को रोटी का बेकार को रोजी का इंतजार है और इसे इंतजार दे विच सानू शामिल करदे हो अपना कीमती समा साडे नाल शेयर करदे हो आई विल एप्रीशिएट ऑलवेज एंटायर ऑफ माई लाइफ कि मेरे नाल तुसीं इन्ना समा स्पेंड किया तो चलिए फिर एक बार उस सफर दे वल जो बहुत खूबसूरत पर तुहाडे साथ दे नाल जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो लै ली ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈ 905-673-3337 9 5 6 7 3 3 3 3 7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

चने नीचो ऊंच करेगा मेरा गोविंद, जिन सेविया तिन पाया मान, यानी कि जिन्हें भी उस परमेश्वर की उस्तत की है सच्चे मन नाल उसनू माण हमेशा मिले। आप कलयुगी जीव हाँ सारे, पर आप अंतरिम तौर के उत्ते अंदरले पासे तो उस परमेश्वर के नाल जुड़ी हुई एक एनर्जी हाँ। एनर्जी मैं कहना ना कि थोड़ा सैलफोन चल रहा है पर उसकी रेंज नहीं पकड़ रहा है, बहुत महंगा सैलफोन है थोड़े को, बहुत महंगा, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट उसकी रेंज सही नहीं, वह गलबात नहीं करा रहा, कम्यूनीकेट नहीं हो रहा, कम्यूनीकेशन नहीं हो रहा, उस महंगे सैलफोन की कोई वैल्यू नहीं रहनी, वह खत्म है। इस तरह असी है, असी व्यापार करांगे साढ़े तो बहुत घाटे वाधे होणगे, मित्तो हो गए ने बहुत सारे व्यापार दे नाल, बाजार दे नाल, कोई क्रिमिनल थोड़ी हाँ आपां, ते ना तुसी हो ना कोई होर है, पर तुसी सोच के व्यापार किया कि जी इहदे नाल मेरा फायदा हो जाए बाकी दा नुकसान हो जाए, उत्थे जिहड़े हैगे तुहाडी आत्मा नूं तुहानूं पुछण दी जरूरत है कि मैं इहनां प्रायश्चित नूं किवें कर सकां। जिहड़ी वाज सुण रहे हो एम 530 डाल दे उत्ते, ते मैं हाँ अमरदीप सिंह बैरी पालकवार फिर तुहाडे नाल, और तुसी साढ़े नाल 905 673 3337 905673

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
3: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानूं रिप्रेजेंट कीता मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंट्स नूं अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानूं रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां सब तों इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
4: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल हैं GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
5: आज खुश तो बात होगी
6: ओ ता होना ही है जो तो टिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है
5: हां मेरे पास बिल्ले के हैं प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है क्या है तुम्हारे पास
6: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी आला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
7: चल क्या रहे हो यहां पर
6: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
6: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com होर कोई सेवा

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: जिंदगी हैरानियां नाल भरी हुई है, पर तुहाडे परिवारां दा फ्यूचर उन्हां विच्चों एक नहीं होना चाहिदा। प्लैनेट इंश्योरेंस तो कीती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसीं अपनी लाइफ दी सारियां इंपोर्टेंट चीज़ां नूं प्रोटेक्ट कर सकदे हो। ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल वी ने, ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे हां तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड। ते तुसीं कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस, ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535।
2: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10,
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

wala song, man. Beauty. प्यार वाला song. मोहब्बत के लिए ये song आपके लिए. क्योंकि इस गीत में फिर भाईजान बहुत प्यार प्यार और इत्तफाक है. ऐसे गीत सुनने को दिल रोज ही करता है.

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: पर उसे मन सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98
3: Eki, galat counting sikhai janne ho
4: Oh, counting nahi E te 32-55-80 te 98 inch de TV ne Jo aaj hi Brampton TV and Appliances to aaye ne Inna kol sare household appliances milange Har brand bahut hi vadhiya price te 32-98 inch de latest TV bhi available ne
3: Brampton TV and Appliances 801 Bovey Drive near Chingozi Call 905-450-2828 905-450-2828 अठाई अठाई

0: हेलो
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हाँ जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
3: मैं हरसिमरन सिंह। साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
4: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਆਦਿ ਲਈ ਰੀਤੀ ਗਲਾਸ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ, ਟੇਬਲ ਟੌਪ, ਫਰਨੀਚਰ ਗਲਾਸ, ਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਗਲਾਸ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰੀਤੀ ਗਲਾਸ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ, 9057908335, 790-8383-35।
5: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
4: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
1: विजन वैनिटीज ते न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स ते भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज ते सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज, डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800, 905-671-1800।
6: कंडीशंस अप्लाई।
7: आर यू रेडी?
8: जंक्शन ले 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम। 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम। 6474294040। तुसी इनारे बैंक्वेट हॉल या लॉन्ज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम। 6474294040। 647-429-4040।
9: तू आ की करी जा रहे?
10: मैं अपनी गर्लफ्रेंड लव लेटर नो चुमदा पे हां।
9: पर आ तो खाली है।
10: आजकल ऐसी गाल नहीं कर रहे ना।
11: फिट्टे मु तेरे।
12: हर महीने मैकेनिक नो पैसे दे देंदे हो। ट्रक खरीदे आया, मैकेनिक नो गोद ले ले।
13: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक तो रोज नखरे करता है।
12: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
14: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
12: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
14: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलदे हां निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसिसागा। कॉल 647-581-9999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
15: आ पैणे, खरीद लिया गहने?
16: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नी मिलिया चंगा सोना।
15: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
16: गल ता तेरी सही है पैण, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
17: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक, जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स। कॉल 9052308800।
18: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
19: Indian Fruitland, one stop for all your grocery needs.
8: ले, इको जगह तू किथे सारा कुछ मिलदा? दो चीजां लई एक जगह रुको, फिर अगलियां दो दी दूजी जगह रुको।
19: इंडियन फ्रूटलैंड है सच्ची, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस ते। आज ही पहुंचो, हुन इंडियन फ्रूटलैंड दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है, ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे, नियर होरांथ्रो स्ट्रीट, ब्रैम्पटन।
16: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530.

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 520 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो ओथे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तों पहला एक नाम याद रखो कोमल ट्रैवल एंड टूर्स डेस्टिनेशन बैडिंग करनी है शिप क्रूज ले जाना है जां फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज तां कोमल ट्रैवल इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करन वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वालियां नूं 905-298-7011 905-239-7711

0: हमारी इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन ब्रूक ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा डे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इक्को ही ना अते इक्को ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दे वार्ड नंबर 1 ते 5 विचों काउंसलर वास्ते उम्मीदवार ने तेजेंद्र सिंह पिंडर नु वोट पाके कामयाब करो पिछले 22 वर्षां तो कम्युनिटी दे विच बचे रहे ने ते कम्युनिटी दे काम बड़ी सहिरता नाल कर रहे ने रियल एक्सपीरियंस रियल एक्शन योर वॉइस योर सिटी अपर ब्रैम्पटन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जोनिंग बायला एक्सपीरियंस दी महारत रखदे ने तेजेंद्र सिंह पिंडर नु एडवांस पोलिंग 26 अक्टूबर नु वोट पाके कामयाब करो सिटी काउंसलर वास्ते वार्ड नंबर 1 ते 5 विचों चोण लड़ रहे ने ब्रैम्पटन वार्ड नंबर 3 ते 4 विचों रीजनल काउंसलर वास्ते चोण लड़ रहे ने संदीप गोयल जगरामा वाले रूपरेखा इस प्रकार है क्वीन तो साउथ नू डिक्सी रोड तो वेस्ट नू मिसिसागा रोड तक थले 407 पैंदा ए सारा एरिया वार्ड नंबर 3 ते 4 विच पैंदा है तुसी संदीप गोयल ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ

0: ये है टोरंटो द हरमन प्यारा रेडियो देश प्रदेश देश प्रदेश
1: फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन
1: कॉल अस नाउ 416-457-3381 416-457-3381 या फिर 416-725-2551 416-725-2551 हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात करने लिए हुने कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444

0: हेलो एम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात करने लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444